0: लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरिति की यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का।

0: श्रोताओं, संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरिती की यात्रा के अंतिम पड़ाव फ्रांस के शहर मेट्स में है। संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरिती की यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द की अपनी यात्रा का समापन मरियम तीर्थस्थल के बीचों बीच मोमबत्तियों के साथ निकाले गए जुलूस से किया। संत पापा विश्वासियों के बीच एक तीर्थ यात्री के तौर पर जुलूस में शामिल हुए। यह समारोह मसाबील के ग्रोटो के पास शुरू हुआ, ठीक उसी जगह जहां संत पापा लियो 14वें ने पिछले दिन लूर्द की अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। इसके बाद जुलूस खुले मैदान से होकर आगे बढ़ा, जिसके आगे ताज पहने कुंवारी मरिया की रोशनी वाली मूर्ति थी। जुलूस के दौरान सुख के भेद पर मनन किया गया और फ्रेंच के साथ साथ इटालियन, इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं में प्रणाम मरिया प्रार्थना की गई। जुलूस के साथ संत पापा धीरे धीरे रोजरी के महागिरजा घर के सामने वाले आंगन की ओर बढ़े। संत पापा ने बीमारों को संबोधित कर कहा, प्यारे बीमार भाइयों और बहनों, इस पूरी सच्चाई को महसूस करने के लिए यहाँ आना और आपके साथ इस जुलूस में शामिल होना सच में बहुत जरूरी है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा, आज शाम आइए हम अपनी नजरें मरियम पर टिकाएं, जो इतनी महिमामयी और साथ ही मानवीय है, और उन्हें हमें उस ईश्वर की ओर ले जाने दें जो विजयी हैं। आप फ्रांस और दुनिया भर से रोशनी के इस जोश भरे और शांतिपूर्ण जुलूस में शामिल होने आए हैं। आइए हम अपनी सबसे प्यारी और जरूरी इच्छाओं को लेकर उन्हें माता मरियम के सामने रखें। हे निर्मल कुंवारी माता, आज शाम हमारे हाथों में जो रोशनी है वह हमारे जीवन में कभी ना बुझे, बल्कि यह हमारे भविष्य को रोशनी करे और हमें आज ही अनंत जीवन के वादों की ओर ले जाए। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दिया। संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन मेट्स में रॉबर्ट सुमन कॉन्फ्रेंस सेंटर में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ एक बैठक की। संत पापा लियो 14वें की मौजूदगी में फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने बातचीत, भाईचारे, मेलमिलाप और शांति की अपील करते हुए पूरे मानव परिवार की एक साथ सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया। यह अपील तीन संकल्पों के साथ समाप्त होती है, लगातार और गंभीर बातचीत करना, युवा पीढ़ियों को एक दूसरे की परंपराओं के बारे में सिखाना और न्याय तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल समय में भी एकजुट होकर खड़े रहना। अपने संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक आदरणीय शुमन की विरासत को याद किया। संत पापा ने कहा, आज मैं मेट्स में आपके बीच खड़े होकर खुशी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के गहरे एहसास के साथ यह कह रहा हूँ, मेट्स सीमाओं और रास्तों के मिलन का शहर है और यह जगह रॉबर्ट शुमन सेंटर है, जिनका नाम यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक के नाम पर रखा गया है। आस्था और पक्के इरादे वाले इस व्यक्ति ने पुरानी बंटवारे वाली लकीरों को पूरे यूरोप के लिए उम्मीद की पुलों में बदलना सीखा और वे विविधता में एकता के सच्चे दूत बने। संत पापा लियो ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती और मित्रता एवं शांति स्थापित करने के लिए धर्मों के बीच बातचीत के उनके आह्वान को याद किया। संत पापा ने कहा, संवाद हमारी पहचान को कम नहीं करता, बल्कि इसे दूसरे की विविधता के सामने खोलकर सरलता और सच्चाई के साथ व्यक्त करता है। संवाद मुलाकात की एक कला है जिसकी हमारी दुनिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि यह आक्रामकता और हिंसा के विपरीत है। संत पापा ने कहा, हिंसा या उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए ईश्वर का नाम लेना उनके नाम को अपवित्र करना है। मानवीय गरिमा को विकृत करने वाली कोई भी चीज ईश्वर से प्रेरित होने का दावा नहीं कर सकती। संत पापा ने सभी से अपील की कि वे ऐसी धार्मिक बातचीत में शामिल हों जो दिलों और शब्दों से हथियार हटाने का आह्वान करती हो। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का रक्षक है, क्योंकि वे जीवन के पवित्र मूल्य को मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों का अच्छा असर तब दिखता है जब उन्हें मानने वाले सबसे कमजोर और नाजुक लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने मेट्स में जमा हुए धार्मिक प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि कैथोलिक कलीसिया उन सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की जिम्मेदारी से तलाश करने वाले सफर के साथी मानती है। ईश्वर की असीम अच्छाई और ज्ञान हमारे साथ रहे और हमें उनके बच्चों और एक दूसरे के भाई बहनों के तौर पर और भी बेहतर ढंग से जीना सिखाए। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, हम शांति के निर्माता बने और उस उम्मीद के गवाह बने जो हमारी दुनिया में लगातार बढ़ती रहती है।
1: फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन पोप लियो 14वें ने मेट्स के रोपर शुमान सम्मेलन केंद्र में शांति और एकता के लिए यूरोप के मूल में विषय वस्तु पर एक सभा में भाग लिया। सभा में संत पापा का स्वागत धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन मार्क एवेलिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने
2: किए।
1: यूरोप को समर्पित एक वीडियो प्रस्तुति एवं यूरोपीय राष्ट्रगान प्रदर्शन के बाद संत पापा ने उपस्थित राष्ट्रपति, नागर समाज एवं विभिन्न धार्मिक नेताओं को संबोधित कर कहा, मुझे इस ऐतिहासिक शहर में जो महाद्वीप के बीचों बीच एक चौराहा है, यूरोप की जड़ों के लिए शांति और एकता शीर्षक इस मीटिंग में आकर खुशी हो रही है। मेरे लिए कहे गए अच्छे शब्दों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मीटिंग का शीर्षक बेशक आदरणीय रॉबर्ट शुमान से प्रेरित है, जिन्हें आज हम इस केंद्र में सम्मानित करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है और मोरसेले जहां वे कई सालों तक रहे, जिसका उन्होंने कई सालों तक राष्ट्रीय असेंबली में प्रतिनिधित्व किया और जहां उन्हें दफनाया गया। 19वीं और 20वीं सदी में अपनी सभी मुश्किलों और परेशानियों के साथ इसी इलाके से उन्होंने 9 मई 1950 के अपने मशहूर घोषणा के द्वारा आज और कल के यूरोप को आकार देने में मदद करने की प्रेरणा ली। यह दस्तावेज यूरोपीय महाद्वीप में मेल मिलाप और एकता के लिए उनके जीवन भर की प्रतिबद्धता की शुरुआत और अंत में दोनों को दिखाता है। यूरोप की जड़ों से शुरू होकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य की ओर काल्पनिक यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए पोप ने कहा, हम खुद से पूछें, रॉबर्ट शुमान इस भूमि के इतिहास से कैसे बने जिसके वे बेटे थे और उन्होंने आज के यूरोप को बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई, जिन्हें इसके संस्थापक पिताओं में से एक माना जाने लगा। यूरोप को परिभाषित करना हमेशा मुश्किल रहा है, चाहे हम इसके आज की बात कर रहे हों या बीते कल की। हेलेनिस्टिक सभ्यता, रोमन साम्राज्य और फिर ख्रिस्त धर्म के फैलने से ऐतिहासिक समय में यूरोप ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, समय के साथ जर्मनिक एवं स्लाविक संस्कृतियों सहित नए संस्कृतियों को मिलाया, जिससे यह और भी बड़े इलाकों में फैल गया। इसलिए यूरोप को भौगोलिक सच्चाई से पहले एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सच्चाई के तौर पर समझना चाहिए। सदियों से इसके स्वरूप एवं परिभाषा में बदलाव आया है। विकास बड़े संकटों एवं नई शुरुआतों के दौर से गुजरी है, लेकिन इसके लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में एक बात लगातार देखी जा सकती है, वह यह है कि यूरोप तब भला फुला और तरक्की की जब वह अपने अतीत की सबसे अच्छी बातों का इस्तेमाल कर पाया और दूसरों से मिलकर उन्हें नए एवं रचनात्मक तरीकों से फिर बनाया। सच तो ये है कि यूरोपीय सभ्यता भी सदियों पुराने मुलाकातों का नतीजा है, भले ही ये हमेशा आसान ना रहे हों। संत पापा ने कहा, हम इस लंबे इतिहास को समझने के लिए यूरोप के दूसरे संस्थापकों को अनदेखा नहीं कर सकते। संत बेनेडिक्ट, जिन्हें संत पापा पॉल 6वें ने 1964 में यूरोप का संरक्षक घोषित किया, उन्हें शांति के दूत, एकता के शिल्पकार और सभ्यता के शिक्षक कहा। गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों एवं विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, अस्पताल और दवा, वास्तुकला एवं इंजीनियरिंग, विज्ञान का विकास, कानून और शहरों एवं राज्यों का गठन। यूरोप में बहुत कुछ संत बेनेडिक्ट एवं उनके मठवासियों के गहरे प्रभाव से आया है। इस मठवासी परंपरा के बिना यूरोपीय सभ्यता जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं होती। यहाँ मेट्स में कोई भी भाईचारे, मेल जोल और बंटवारे की बेनेडिक्टाइन भावना को महसूस कर सकता है। यहीं से ग्रेगोरियन मंत्र पूरे क्षेत्र में फैला, जिससे पूरे महाद्वीप में मेल जोल और सुंदरता आई। संत पापा ने ख्रिस्त धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इसलिए हम यूरोप की बात ख्रिस्त धर्म का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। रॉबर्ट शुमान ने इसे तब समझा जब उन्होंने लिखा, ख्रिस्त धर्म ने सभी लोगों को स्वभाव से बराबरी की शिक्षा दी, साथ ही ईश्वर की संतान के रूप में एक ही मसीह द्वारा बचाए गए बिना किसी जाति, रंग, वर्ग या पेशे के भेदभाव के। इसने काम की निष्ठा और उसे करने की सभी की जिम्मेदारी सिखाई। इसने उन आंतरिक मूल्यों की अहमियत को पहचाना जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रेम और उदारता के सार्वभौमिक नियम ने हर इंसान को हमारा पड़ोसी बनाया और इसी पर ख्रिस्त जगत में सामाजिक रिश्ते बने हैं। संत पापा ने आधुनिक यूरोप के दूसरे संस्थापक के रूप में अलचीते दी गास्परी का नाम लिया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आम यूरोपीय विरासत या साझा नैतिक नजरिया है जो मानव और इसकी जिम्मेदारी को ऊपर उठाता है, जिसमें सुसमाचारी भाईचारे की भावना, पुरखों से मिले कानून के लिए सम्मान, सदियों से बेहतर हुए सुंदरता के लिए प्यार और हजारों सालों के अनुभव से और तेज हुई सच्चाई एवं न्याय के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। सिर्फ धार्मिक मानदंड से बढ़कर, संत पापा ने कहा, यूरोप का ख्रिस्त धर्म के प्रति कर्ज पहचानने से हमें यह और स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है कि ऊपर वाले के प्रति खुलापन हमेशा मानव का एक जरूरी हिस्सा और सभ्यता का एक जीता जागता जरिया होता है। इस बारे में संत पापा ने यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के अनुच्छेद 17 को बहुत महत्वपूर्ण बताया, जो कलीसियाओं के साथ एक खुली, पारदर्शी एवं नियमित बातचीत की बात करता है और यह सदस्य देशों में कलीसिया को जो स्थान मिलता है उसका सम्मान करता है और उस पर कोई बुरा असर नहीं डालता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सही अर्थ बतलाते हुए पोप ने कहा कि यह सभी पार्टियों के बीच असली सहयोग, राष्ट्रीय एवं यूरोपीय अधिकारियों द्वारा कलीसिया की स्वतंत्रता का सम्मान और उनके संगठन, अभिव्यक्ति एवं उपासना की आज़ादी को बढ़ावा देने को भी जरूरी मानता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन मूल्यों के स्रोत पर लौटना होगा जो नागरिक समाज को मजबूत करते हैं, यानी मानव के अधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के वैश्विक मूल्य। आज के बहुसांस्कृतिक माहौल में इन मूल्यों के वैश्विक स्वभाव को सुदृढ़ करना जो उनके बने रहने के लिए जरूरी है। इसके लिए यूरोप की जड़ों को फिर से खोजना और दूसरों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दोनों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत है अगर हमें मानव के केंद्र को फिर से खोजना है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति एवं एकता जैसे शब्दों को असली अर्थ देना है। इसी कारण से पोप फ्रांसिस का निमंत्रण महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोप की असलियत की जटिलता को उसकी परंपराओं और संवेदनशीलता की सारी समृद्धि में समझना, साथ ही एक रचनात्मक तालमेल बनाने की कोशिश करना जो शक्ति के दिखावे से मुक्त हो। अपनी जड़ों की ओर लौटने और फिर बातचीत करने की ये दो गतिविधियां हमें अधिकारों और अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच सही संतुलन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने हमें हमेशा याद दिलाया है, कर्तव्यों की भावना अब अधिकारों की भावना से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जिसका फल यह हो रहा है कि हर इंसान के अधिकारों का ध्यान नहीं दिया जाता है, कि वह एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें उसके अधिकार और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों और समाज की आम भलाई से जुड़े होते हैं। ऐसे माहौल में संत पापा ने आप्रवासी संकट को उजागर करते हुए कहा, आज का यूरोप अब अपने लंबे इतिहास में एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां बहुत से पुरुष और महिलाएं युद्ध एवं जुल्म से भागकर या गरीबी एवं मुश्किलों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में महादेश में आ रहे हैं। संत पापा ने अप्रवासियों की मदद करने का समर्थन करते हुए कहा, किसी इंसान का स्वागत करने का मतलब है उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाना, उसे अपनी क्षमता, योग्यता एवं समझ को बढ़ाने का मौका देना और साथ ही घर के जीवन में शामिल होने का अवसर देना। शुमान का मानना था कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय कानून के विपरीत कोई एक देश जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता, बल्कि यह पक्ता सुंत सर्वदा अनुबंध का पालन आवश्यक के वैश्विक रूप से माने गए सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को इस इलाके के खास कानूनी ढांचे से सुरक्षित रखा गया है। जब वैटिकन एवं फ्रांस के बीच 1801 के समझौते के आधार पर राज्य और कातिक कलीसिया के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है, जो अभी भी लागू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद देशों के बीच उनके रिश्तों में असली समानता पर जोर देते हैं और जो दबदबा की चाह का सबसे अच्छा इलाज है। आज लोगों और देशों के बीच रिश्ते तेजी से खराब होते जा रहे हैं। अपनी बात रखने की अहमियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बजाय लोग झूठ और धोखे की ढींग हाँक रहे हैं। ऐसी स्थिति में संत पापा ने यूरोप के प्रति अपनी उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा, यूरोप दूसरों के लिए सम्मान प्रकट करके इस चक्कर को तोड़ने में मदद कर सकता है, जिसे उसने बढ़ाना और बनाए रखना सीखा है। पिछले 80 सालों में यूरोप ने अच्छी तरह से दिखाया है कि झगड़े के बजाय मुलाकात के जरिए अलग अलग राय, दावे और हितों को जाहिर करना मुमकिन है। शुमान हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा यथार्थवादी और साहसी होना चाहिए। यूरोप एक ही बार में नहीं बनेगा, ना ही निर्माण के किसी एक बड़ी योजना से बनेगा या ठोस कामयाबियों से बनेगा, जो असल में स्वतंत्रता उत्पन्न करती है। हमें आगे बढ़ने की अपनी योग्यता पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए, तब भी जब हमारे कदम छोटे हों और लगभग किसी का ध्यान ना जाए। सब कुछ और तुरंत पाने की आज की चाहत यूरोपीय इतिहास और संस्कृति से मेल नहीं खाती, तो इसके बजाय हमें समय और सब्र की कीमत सिखाते हैं। छोटे छोटे कदमों से ही हम इस ठोस एकजुटता को जिंदा कर सकते हैं, ताकि कोई भी अकेला या भुलाया गया महसूस ना करे। संत पापा ने युवाओं की विशेष याद की, जिन्हें वर्तमान और भविष्य का यूरोप बनाने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने शुमान की बातों की याद दिलाते हुए कहा, एक मेल मिलाप वाले एकजुट और मजबूत यूरोप का यह विचार युवा पीढ़ी का नारा बन सकता है, जो नफरत और डर से मुक्त मानवता की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो अत्यधिक विभाजन के बाद एक बार फिर ख्रिस्ते भाईचारा को जीना सीख रही है। युवाओं से संत पापा ने कहा, अपने दिलों में, अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में, अपने शहरों और देशों में और पूरे यूरोप में शांति को बढ़ावा देने का काम जिम्मेदारी से करने की हिम्मत रखें। हिंसा और जुल्म की सोच के आगे ना झुकें। हर पल जीवन से प्यार करें और भविष्य से नहीं डरें। परिवार शुरू करने से, बच्चों को दुनिया में लाने से, गर्भधारण से लेकर मौत तक हर इंसान की गरिमा की रक्षा करने से नहीं डरें। अपने समुदायों की भलाई के लिए, जिसमें राजनीतिक जुड़ाव भी शामिल है, बिना थके काम करने से नहीं घबराएं। समुदाय का निर्माण करने वाले बनें और आपके साथ यूरोप अपनी विरासत में मजबूती से जुड़ा हुआ फलता फूलता रहेगा और पूरी दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर आपको इन कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और पूरे यूरोप को आशीर्वाद एवं सुरक्षा दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओ, आज हमारे कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें की फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और फादर संजय दिलीप एक्का।

0: श्रोताओं, संत पापा 25 सितंबर से शुरू हुई प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव फ्रांस के शहर मेट्स में हैं। संत पापा लियो 14वें ने अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे पड़ाव लूर्द की अपनी यात्रा का समापन मरियम तीर्थस्थल के बीचों बीच मोमबत्तियों के साथ निकाले गए जुलूस से किया। संत पापा विश्वासियों के बीच एक तीर्थ यात्री के तौर पर जुलूस में शामिल हुए। यह समारोह मसाबील के ग्रोटो के पास शुरू हुआ, ठीक उसी जगह जहां संत पापा लियो 14वें ने पिछले दिन लूर्द की अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की थी। इसके बाद जुलूस खुले मैदान से होकर आगे बढ़ा, जिसके आगे ताज पहने कुंवारी मरिया की रोशनी वाली मूर्ति थी। जुलूस के दौरान सुख के भेद पर मनन किया गया और फ्रेंच के साथ साथ इटालियन, इंग्लिश और स्पैनिश भाषाओं में प्रणाम मरिया प्रार्थना की गई। जुलूस के साथ संत पापा धीरे धीरे रोजरी के महागिरजा घर के सामने वाले आंगन की ओर बढ़े। संत पापा ने बीमारों को संबोधित कर कहा, प्यारे बीमार भाइयों और बहनों, इस पूरी सच्चाई को महसूस करने के लिए यहाँ आना और आपके साथ इस जुलूस में शामिल होना सच में बहुत जरूरी है। संत पापा ने सभी को आमंत्रित करते हुए कहा, आज शाम आइए हम अपनी नजरें मरियम पर टिकाएं, जो इतनी महिमामयी और साथ ही मानवीय है, और उन्हें हमें उस ईश्वर की ओर ले जाने दें जो विजयी हैं। आप फ्रांस और दुनिया भर से रोशनी के इस जोश भरे और शांतिपूर्ण जुलूस में शामिल होने आए हैं। आइए हम अपनी सबसे प्यारी और जरूरी इच्छाओं को लेकर उन्हें माता मरियम के सामने रखें। हे निर्मल कुमारी माता, आज शाम हमारे हाथों में जो रोशनी है वह हमारे जीवन में कभी ना बुझे, बल्कि यह हमारे भविष्य को रोशनी करे और हमें आज ही अनंत जीवन के वादों की ओर ले जाए। अपना संदेश समाप्त करने के बाद संत पापा लियो 14वें ने विश्वासियों को अपना आशीर्वाद दिया। संत पापा लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन मेट्स में रॉबर्ट सुमन कॉन्फ्रेंस सेंटर में विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ एक बैठक की। संत पापा लियो 14वें की मौजूदगी में फ्रांस के धार्मिक नेताओं ने बातचीत, भाईचारे, मेलमिलाप और शांति की अपील करते हुए पूरे मानव परिवार की एक साथ सेवा करने के अपने संकल्प को दोहराया। यह अपील तीन संकल्पों के साथ समाप्त होती है, लगातार और गंभीर बातचीत करना, युवा पीढ़ियों को एक दूसरे की परंपराओं के बारे में सिखाना और न्याय तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए मुश्किल समय में भी एकजुट होकर खड़े रहना। अपने संबोधन में संत पापा लियो 14वें ने यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक आदरणीय शुमन की विरासत को याद किया। संत पापा ने कहा, आज मैं मेट्स में आपके बीच खड़े होकर खुशी और आध्यात्मिक जिम्मेदारी के गहरे एहसास के साथ यह कह रहा हूँ, मेट्स सीमाओं और रास्तों के मिलन का शहर है और यह जगह रॉबर्ट शुमन सेंटर है, जिनका नाम यूरोपीय संघ के संस्थापकों में से एक के नाम पर रखा गया है। आस्था और पक्के इरादे वाले इस व्यक्ति ने पुरानी बंटवारे वाली लकीरों को पूरे यूरोप के लिए उम्मीद की पुलों में बदलना सीखा और वे विविधता में एकता के सच्चे दूत बने। संत पापा लियो ने दिवंगत संत पापा फ्रांसिस के विश्व पत्र फ्रातेली तुत्ती और मित्रता एवं शांति स्थापित करने के लिए धर्मों के बीच बातचीत के उनके आह्वान को याद किया। संत पापा ने कहा, संवाद हमारी पहचान को कम नहीं करता, बल्कि इसे दूसरे की विविधता के सामने खोलकर सरलता और सच्चाई के साथ व्यक्त करता है। संवाद मुलाकात की एक कला है जिसकी हमारी दुनिया को बहुत जरूरत है, क्योंकि यह आक्रामकता और हिंसा के विपरीत है। संत पापा ने कहा, हिंसा या उत्पीड़न को सही ठहराने के लिए ईश्वर का नाम लेना उनके नाम को अपवित्र करना है। मानवीय गरिमा को विकृत करने वाली कोई भी चीज ईश्वर से प्रेरित होने का दावा नहीं कर सकती। संत पापा ने सभी से अपील की कि वे ऐसी धार्मिक बातचीत में शामिल हों जो दिलों और शब्दों से हथियार हटाने का आह्वान करती हो। उन्होंने कहा कि धर्म जीवन का रक्षक है, क्योंकि वे जीवन के पवित्र मूल्य को मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि धर्मों का अच्छा असर तब दिखता है जब उन्हें मानने वाले सबसे कमजोर और नाजुक लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसके बाद संत पापा लियो 14वें ने मेट्स में जमा हुए धार्मिक प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि कैथोलिक कलीसिया उन सभी लोगों को सच्चाई, अच्छाई और सुंदरता की जिम्मेदारी से तलाश करने वाले सफर के साथी मानती है। ईश्वर की असीम अच्छाई और ज्ञान हमारे साथ रहे और हमें उनके बच्चों और एक दूसरे के भाई बहनों के तौर पर और भी बेहतर ढंग से जीना सिखाए। इसलिए हम चाहे कहीं भी रहें, हम शांति के निर्माता बने और उस उम्मीद के गवाह बने जो हमारी दुनिया में लगातार बढ़ती रहती है।
1: फ्रांस की प्रेरितिक यात्रा के अंतिम दिन पोप लियो 14वें ने मेट्स के रोपर शुमान सम्मेलन केंद्र में शांति और एकता के लिए यूरोप के मूल में विषय वस्तु पर एक सभा में भाग लिया। सभा में संत पापा का स्वागत धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कार्डिनल जॉन मार्क एवेलिन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने किए।
2: मेडम मिस्यू एन वो ग्रेट्स ए क्वालिटे ट्रेस सिंपर सोयिए ले बिएनवेनू अ मेट्स।
1: यूरोप को समर्पित एक वीडियो प्रस्तुति एवं यूरोपीय राष्ट्रगान प्रदर्शन के बाद संत पापा ने उपस्थित राष्ट्रपति, नागर समाज एवं विभिन्न धार्मिक नेताओं को संबोधित कर कहा, मुझे इस ऐतिहासिक शहर में जो महाद्वीप के बीचों बीच एक चौराहा है, यूरोप की जड़ों के लिए शांति और एकता शीर्षक की इस मीटिंग में आकर खुशी हो रही है। मेरे लिए कहे गए अच्छे शब्दों के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी मीटिंग का शीर्षक बेशक आदरणीय रॉबर्ट शुमान से प्रेरित है, जिन्हें आज हम इस केंद्र में सम्मानित करना चाहते हैं, जिसका नाम उन्हीं के नाम पर है, और मोरसेले जहां वे कई सालों तक रहे, जिसका उन्होंने कई सालों तक राष्ट्रीय असेंबली में प्रतिनिधित्व किया और जहां उन्हें दफनाया गया। 19वीं और 20वीं सदी में अपनी सभी मुश्किलों और परेशानियों के साथ इसी इलाके से उन्होंने 9 मई 1950 के अपने मशहूर घोषणा के द्वारा आज और कल के यूरोप को आकार देने में मदद करने की प्रेरणा ली। यह दस्तावेज यूरोपीय महाद्वीप में मेल मिलाप और एकता के लिए उनके जीवन भर की प्रतिबद्धता की शुरुआत और अंत में दोनों को दिखाता है। यूरोप की जड़ों से शुरू होकर वर्तमान से गुजरते हुए भविष्य की ओर काल्पनिक यात्रा के लिए आमंत्रित करते हुए पोप ने कहा, हम खुद से पूछें, रॉबर्ट शुमान इस भूमि के इतिहास से कैसे बने जिसके वे बेटे थे, और उन्होंने आज के यूरोप को बनाने में कैसे अहम भूमिका निभाई, जिन्हें इसके संस्थापक पिताओं में से एक माना जाने लगा। यूरोप को परिभाषित करना हमेशा मुश्किल रहा है, चाहे हम इसके आज की बात कर रहे हों या बीते कल की। हेलेनिस्टिक सभ्यता, रोमन साम्राज्य और फिर ख्रिस्त धर्म के फैलने से ऐतिहासिक समय में यूरोप ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई, समय के साथ जर्मनिक एवं स्लाविक संस्कृतियों सहित नए संस्कृतियों को मिलाया, जिससे यह और भी बड़े इलाकों में फैल गया। इसलिए यूरोप को भौगोलिक सच्चाई से पहले एक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सच्चाई के तौर पर समझना चाहिए। सदियों से इसके स्वरूप एवं परिभाषा में बदलाव आया है। विकास बड़े संकटों एवं नए शुरुआतों के दौर से गुजरी है, लेकिन इसके लंबे और उथल पुथल भरे इतिहास में एक बात लगातार देखी जा सकती है, वह यह है कि यूरोप तब फला फूला और तरक्की की जब वह अपने अतीत की सबसे अच्छी बातों का इस्तेमाल कर पाया और दूसरों से मिलकर उन्हें नए एवं रचनात्मक तरीकों से फिर बनाया। सच तो ये है कि यूरोपीय सभ्यता भी सदियों पुराने मुलाकातों का नतीजा है, भले ही ये हमेशा आसान ना रहे हों। संत पापा ने कहा, हम इस लंबे इतिहास को समझने के लिए यूरोप के दूसरे संस्थापकों को अनदेखा नहीं कर सकते। संत बेनेडिक्ट, जिन्हें संत पापा पॉल 6वें ने 1964 में यूरोप का संरक्षक घोषित किया, उन्हें शांति के दूत, एकता के शिल्पकार और सभ्यता के शिक्षक कहा। गरीबों, बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल, बच्चों एवं विश्वविद्यालयों की पढ़ाई, अस्पताल और दवा, वास्तुकला एवं इंजीनियरिंग, विज्ञान का विकास, कानून और शहरों एवं राज्यों का गठन। यूरोप में बहुत कुछ संत बेनेडिक्ट एवं उनके मठवासियों के गहरे प्रभाव से आया है। इस मठवासी परंपरा के बिना यूरोपीय सभ्यता जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं होती। यहाँ मेट्स में कोई भी भाईचारे, मेल जोल और बंटवारे की बेनेडिक्टाइन भावना को महसूस कर सकता है। यहीं से ग्रेगोरियन मंत्र पूरे क्षेत्र में फैला, जिससे पूरे महाद्वीप में मेल जोल और सुंदरता आई। संत पापा ने ख्रिस्ते धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, इसलिए हम यूरोप की बात ख्रिस्ते धर्म का जिक्र किए बिना नहीं कर सकते। रॉबर्ट शुमान ने इसे तब समझा जब उन्होंने लिखा, ख्रिस्ते धर्म ने सभी लोगों को स्वभाव से बराबरी की शिक्षा दी, साथ ही ईश्वर की संतान के रूप में एक ही मसीह द्वारा बचाए गए बिना किसी जाति, रंग, वर्ग या पेशे के भेदभाव के। इसने काम की निष्ठा और उसे करने की सभी की जिम्मेदारी सिखाई। इसने उन आंतरिक मूल्यों की अहमियत को पहचाना जो व्यक्ति को महान बनाते हैं। प्रेम और उदारता के सार्वभौमिक नियम ने हर इंसान को हमारा पड़ोसी बनाया और इसी पर ख्रिस्त जगत में सामाजिक रिश्ते बने हैं। संत पापा ने आधुनिक यूरोप के दूसरे संस्थापक के रूप में अल्चीते दी गास्परी का नाम लिया, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि आम यूरोपीय विरासत या साझा नैतिक नजरिया है जो मानव और इसकी जिम्मेदारी को ऊपर उठाता है, जिसमें सुसमाचारी भाईचारे की भावना, पुरखों से मिले कानून के लिए सम्मान, सदियों से बेहतर हुए सुंदरता के लिए प्यार और हजारों सालों के अनुभव से और तेज हुई सच्चाई एवं न्याय के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। सिर्फ धार्मिक मानदंड से बढ़कर, संत पापा ने कहा, यूरोप का ख्रिस्त धर्म के प्रति कर्ज पहचानने से हमें यह और स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है कि ऊपर वाले के प्रति खुलापन हमेशा मानव का एक जरूरी हिस्सा और सभ्यता का एक जीता जागता जरिया होता है। इस बारे में संत पापा ने यूरोपीय संघ के कामकाज पर संधि के अनुच्छेद 17 को बहुत महत्वपूर्ण बताया, जो कलीसियाओं के साथ एक खुली, पारदर्शी एवं नियमित बातचीत की बात करता है और यह सदस्य देशों में कलीसिया को जो स्थान मिलता है उसका सम्मान करता है और उस पर कोई बुरा असर नहीं डालता। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का सही अर्थ बतलाते हुए पोप ने कहा कि यह सभी पार्टियों के बीच असली सहयोग, राष्ट्रीय एवं यूरोपीय अधिकारियों द्वारा कलीसिया की स्वतंत्रता का सम्मान और उनके संगठन, अभिव्यक्ति एवं उपासना की आज़ादी को बढ़ावा देने को भी जरूरी मानता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन मूल्यों के स्रोत पर लौटना होगा जो नागरिक समाज को मजबूत करते हैं, यानी मानव के अधिकार, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून के शासन के वैश्विक मूल्य। आज के बहुसांस्कृतिक माहौल में इन मूल्यों के वैश्विक स्वभाव को सुदृढ़ करना जो उनके बने रहने के लिए जरूरी है। इसके लिए यूरोप की जड़ों को फिर से खोजना और दूसरों के साथ बातचीत के लिए खुलापन दोनों की आवश्यकता है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक जरूरत है अगर हमें मानव के केंद्र को फिर से खोजना है और स्वतंत्रता, लोकतंत्र, शांति एवं एकता जैसे शब्दों को असली अर्थ देना है। इसी कारण से पोप फ्रांसिस का निमंत्रण महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोप की असलियत की जटिलता को उसकी परंपराओं और संवेदनशीलता की सारी समृद्धि में समझना, साथ ही एक रचनात्मक तालमेल बनाने की कोशिश करना जो शक्ति के दिखावे से मुक्त हो। अपनी जड़ों की ओर लौटने और फिर बातचीत करने की ये दो गतिविधियां हमें अधिकारों और अधिकार तथा कर्तव्यों के बीच सही संतुलन बनाने में भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि पोप फ्रांसिस ने हमें हमेशा याद दिलाया है, कर्तव्यों की भावना अब अधिकारों की भावना से जुड़ा हुआ नहीं लगता, जिसका फल यह हो रहा है कि हर इंसान के अधिकारों का ध्यान नहीं दिया जाता है, कि वह एक ऐसे समाज का हिस्सा है जिसमें उसके अधिकार और कर्तव्य दूसरों के अधिकारों और समाज की आम भलाई से जुड़े होते हैं। ऐसे माहौल में संत पापा ने आप्रवासी संकट को उजागर करते हुए कहा, आज का यूरोप अब अपने लंबे इतिहास में एक नए पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां बहुत से पुरुष और महिलाएं युद्ध एवं जुल्म से भागकर या गरीबी एवं मुश्किलों से दूर बेहतर जीवन की तलाश में महादेश में आ रहे हैं। संत पाप ने अप्रवासियों की मदद करने का समर्थन करते हुए कहा, किसी इंसान का स्वागत करने का मतलब है उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाना, उसे अपनी क्षमता, योग्यता एवं समझ को बढ़ाने का मौका देना और साथ ही घर के जीवन में शामिल होने का अवसर देना। शुमान का मानना था कि यूरोप अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान पर आधारित है, जिसे राष्ट्रीय कानून के विपरीत कोई एक देश जबरदस्ती लागू नहीं कर सकता, बल्कि यह पक्ता सुंद सर्वदा अनुबंध का पालन आवश्यक के वैश्विक रूप से माने गए सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को इस इलाके के खास कानूनी ढांचे से सुरक्षित रखा गया है जो वैटिकन एवं फ्रांस के बीच 1801 के समझौते के आधार पर राज्य और कैथोलिक कलीसिया के बीच संबंधों को भी नियंत्रित करता है जो अभी भी लागू है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षवाद देशों के बीच उनके रिश्तों में असली समानता पर जोर देते हैं और जो दबदबा की चाह का सबसे अच्छा इलाज है। आज लोगों और देशों के बीच रिश्ते तेजी से खराब होते जा रहे हैं। अपनी बात रखने की अहमियत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके बजाय लोग झूठ और धोखे की ढींग हाँक रहे हैं। ऐसी स्थिति में संत पापा ने यूरोप के प्रति अपनी उम्मीद व्यक्त करते हुए कहा, यूरोप दूसरों के लिए सम्मान प्रकट करके इस चक्कर को तोड़ने में मदद कर सकता है जिसे उसने बढ़ाना और बनाए रखना सीखा है। पिछले 80 सालों में यूरोप ने अच्छी तरह से दिखाया है कि झगड़े के बजाय मुलाकात के जरिए अलग अलग राय, दावे और हितों को जाहिर करना मुमकिन है। शुमान हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा यथार्थवादी और साहसी होना चाहिए। यूरोप एक ही बार में नहीं बनेगा, ना ही निर्माण के किसी एक बड़ी योजना से बनेगा या ठोस कामयाबियों से बनेगा जो असल में स्वतंत्रता उत्पन्न करती है। हमें आगे बढ़ने की अपनी योग्यता पर कभी भरोसा नहीं खोना चाहिए, तब भी जब हमारे कदम छोटे हों और लगभग किसी का ध्यान ना जाए। सब कुछ और तुरंत पाने की आज की चाहत यूरोपीय इतिहास और संस्कृति से मेल नहीं खाती, तो इसके बजाय हमें समय और सब्र की कीमत सिखाते हैं। छोटे छोटे कदमों से ही हम इस ठोस एकजुटता को जिंदा कर सकते हैं ताकि कोई भी अकेला या भुलाया गया महसूस ना करे। संत पापा ने युवाओं की विशेष याद की जिन्हें वर्तमान और भविष्य का यूरोप बनाने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने शुमान की बातों की याद दिलाते हुए कहा, एक मेल मिलाप वाले एकजुट और मजबूत यूरोप का यह विचार युवा पीढ़ी का नारा बन सकता है जो नफरत और डर से मुक्त मानवता की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जो अत्यधिक विभाजन के बाद एक बार फिर ख्रिस्ते भाईचारा को जीना सीख रही है। युवाओं से संत पापा ने कहा, अपने दिलों में, अपने रिश्तों में, अपने परिवारों में, स्कूलों और यूनिवर्सिटी में, अपने शहरों और देशों में और पूरे यूरोप में शांति को बढ़ावा देने का काम जिम्मेदारी से करने की हिम्मत रखें। हिंसा और जुल्म की सोच के आगे ना झुकें। हर पल जीवन से प्यार करें और भविष्य से नहीं डरें। परिवार शुरू करने से, बच्चों को दुनिया में लाने से, गर्भधारण से लेकर मौत तक हर इंसान की गरिमा की रक्षा करने से नहीं डरें। अपने समुदायों की भलाई के लिए, जिसमें राजनीतिक जुड़ाव भी शामिल है, बिना थके काम करने से नहीं घबराएं। समुदाय का निर्माण करने वाले बने और आपके साथ यूरोप अपनी विरासत में मजबूती से जुड़ा हुआ फलता फूलता रहेगा और पूरी दुनिया को प्रेरणा देता रहेगा। ईश्वर आपको इन कर्तव्यों को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें और पूरे यूरोप को आशीर्वाद एवं सुरक्षा दें। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्मसार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में

0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
0: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
0: मतलब, हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ,

0: हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
1: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: क्रिस्त दया कर,
1: क्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: क्रिस्त हमारी सुन,
1: क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर,
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: क्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुंवारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर।

हमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वीं का मिड्स में दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो ने फ्रांस के अपनी प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में मिड्स के महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए तीन बातों, धार्मिकता, न्याय और शांति को तीन निशानियों, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल के रूप में चिंतन किया। संत पापा ने कहा, पहला पाठ में नबी इसायस को हम धार्मिकता, न्याय और शांति के रूप में ईश्वरीय राज्य के आने के बारे में कहते सुनते हैं। वे हमारे लिए तीन निशानियों को प्रस्तुत करते हैं, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल। मरुभूमि एक संयम और शांति का स्थल है जहां न्याय स्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ, संहिता जो लोगों को अच्छाई के मार्ग में चलने को मदद करती है। यह हमें त्याग और बलिदान की भी शिक्षा देती है। दूसरी निशानी हमारे लिए वाटिका के बारे कहती है जहाँ न्याय राज्य करता है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रभाव को व्यक्त करता है जहाँ एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ईश्वर की योजनाओं में अपने को संयुक्त करता, जो उसे पूरी तरह पल्लवित होने में मदद करता है। हमारे लिए तीसरी निशानी घर है, शांति का एक निवास। संत पापा ने कहा, एक घर अपने में एक पत्थर की संरचना से बढ़कर है। यह मानव की उपस्थिति और प्रेम का स्थल है। इस अर्थ में नबी के शब्द हमें इस बात की याद दिलाते हैं, एक दुनिया कमियों से भरी है, एकता का निर्माण सिर्फ करुणा के कार्य द्वारा हो सकता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार भी हमें इस बात का जिक्र करता है, अत्यधिक हिंसा से ग्रसित दुनिया में जहां हम तोल मोल और घमंड को विभिन्न स्तरों पर पाते हैं, यीशु हमें मरुभूमि को मरुधान में परिवर्तित करने, वाटिकाएं लगाने और घर का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वे हमें वह मार्ग दिखलाते हैं जो क्षमा, दया और उदारता की ओर ले चलती है। हम ध्यान से अपने और अपने चारों ओर देखें, बदले, हिंसा और परित्याग की भावनाएं किन चीजों को लाती हैं हमारे अंदर और हमारी दुनिया दोनों में। ऐसे क्रूर मनोभावों से उत्पन्न होने वाले रिश्ते और सिस्टम मानव के लिए कैसा भविष्य लेकर आएगा। आप में से जो इस धरती की संतान हैं, जो आपसी संघर्षों से टूटी हुई है, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि यह सच नहीं है कि बदला लेने वाला क्षमा देने वाले से अधिक मजबूत है। मेल मिलाप केवल तब संभव है जब कोई क्रोध के कड़ियों को तोड़ने का साहस करता है। अतः संहिता, न्याय और परिवर्तन शांति के एक मार्ग में कदमों स्वरूप हैं, जो एक व्यक्तिगत यात्रा से शुरू होती है और समुदाय का अंग बनती है। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ मिड्स में इन मूल्यों की याद करना अपने में महत्वपूर्ण है, जिस पर यूरोप सदियों से निर्मित हुआ है, जहाँ हम उसकी आध्यात्मिक और नैतिक विरासतों को पाते हैं, जो आर्थिक और राजनैतिक धरोहरों को विस्तृत करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इसकी याद करते हुए कहते हैं कि इसकी जड़ें नर और नारियों के जीवन तथा कार्यों में है, जो सुसमाचार की शिक्षाओं को जीते उसे घोषित और साझा करते हैं। हम इसे महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि कृषि और शिल्पकारिता की योग्यता में देख सकते हैं, जिसे मठवासीवाद ने इतिहास में प्रसारित किया।
2: Les principes moraux du monde dans lequel nous vivons nous ont été transmis à partir de là, des principes tels que la primauté de la personne.
1: Sant Papa ne kaha ki naitik siddhant jo duniya ko sanchalit karti hai, ve hame yahan se mili hai. मूल सिद्धांतें जैसे कि मनुष्य की प्रधानता और उसकी पवित्रता तथा सभी स्थितियों और सभी परिस्थितियों में मानवीय जीवन की अपरिहार्यता, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज की मूलभूत कड़ी स्वरूप, परिवार की प्रधानता, गरीबों और अति संवेदनशीलों की देखरेख, अपरिचितों का स्वागत तथा बुजुर्गों का सम्मान, आपके स्थानीय कलिसिया जो अपनी विशेष स्थिति के कारण नागर समाज और विश्वास के सार्थक गुणों के आधार पर वार्ता की अद्वितीय विरासत को संजोकर रखती है, यह जिम्मेदारी है कि वह इस निष्ठा का एक जीवंत प्रयोगशाला बने। इन सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बने रहना अपने में कभी भी सहज नहीं है, उनके लिए भी जो हमसे पहले आए। इसके बावजूद निष्ठा और लगनता में हमारे पूर्वजों ने इन्हें एक धरोहर के रूप में सौंपा ताकि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। साथ ही हमारे अनुभव, हमारी कोशिशें और हमारी कहानियों से इनके मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि होती है।
2: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
1: इस शहर का शानदार महागिरजाघर जहां हम आज जमा हुए हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह लैटन्स डुबोन ड्यू के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें 6,500 स्क्वायर मीटर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं जिन पर धर्मग्रंथ के दृश्यों को चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने दीवारों को छोटा करने की कोशिश की जो अब भी ठोस है ताकि भक्तों तक भरपूर रोशनी पहुंच सके। इस तरह जो कोई भी अंदर आता है वह हजारों रंगों की झलक के जरिए प्रार्थना और ध्यान के एक शानदार स्रोत बिब्लिया पापरम में डूब जाता है। रोशनी की इस जगह में ऐतिहासिक रंगीन कांच की खिड़कियों की अद्वितीयता को हाल ही में मार्क चागल की प्रतिभा ने और भी निखार दिया। महागिरजा की दीवारों पर बने इस महान यहूदी चित्रकार की कृति ने लैंटन्स डू बॉन ड्यू को एकता और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता का एक अनोखा प्रतीक बनाया है। यह महागिरजा घर हमें सिखाती है कि ईश्वर की रोशनी हमारी खास पहचान को नहीं मिटाती है बल्कि अलग अलग इतिहास और संस्कृतियों को शांति के एक शानदार पिचकारी में जोड़ती है जो हमारे समय में बहुत जरूरी है, जो नए बंटवारे और झगड़ों से टूटी है। जब हम इन रंगीन कांच की खिड़कियों के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप का भविष्य एक जैसा होने में नहीं बल्कि मतभेद के तालमेल में है, जहां अतीत के घाव ऐसी जगह बन जाते हैं जिनसे रोशनी चमकती है। संत पापा लियो ने कहा, इस निशानी में हम कलिसिया की पहचान को पाते हैं। हम उन संरचनाओं का उपयोग करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को फैलाने में मदद करती है। इन रंगीन खिड़कियों के बिना संत स्टीफन महागिरजा घर चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर रहा होता।
2: Avec ces vitraux, elles deviennent des livres qui nous rassemblent pour faire mémoire d'histoires merveilleuses.
1: इन रंगीन खिड़कियों के द्वारा यद्यपि वे खिड़कियां पुस्तकें बनती हैं जो हमें नायकी, अच्छाई, करुणा, प्रेम और नैतिक सुंदरता की याद दिलाती हैं, जिनकी ओर हमें उदारता और साहस में आने तथा उन्हें अपने साक्ष्यों में प्रस्तुत करने को कहा जाता है। कृतज्ञता और विश्वास के भाव में जैसे जैसे फ्रांस की मेरी यात्रा खत्म हो रही है, मैं मिट्स के समुदाय से यह साझा करना चाहता हूँ जो पहले से कहीं ज्यादा आज यूरोप और दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनने को बुलाई जाती है, और मैं इसे कुमारी मरियम और आपके संरक्षक संतों की देख रेख में सुपुर्द करता हूँ।
2: On a confiance aux prières de la Vierge Marie et de vos saints patrons.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और 28 सितंबर की शाम वैटिकन वापस लौटे। मेट से रोम वापसी की विमान यात्रा में परंपरा के अनुसार पत्रकारों से बातें हुई, जिसमें उन्होंने युद्ध और उन्हें बनाए रखने वाले आर्थिक फायदों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। कुछ लोग हथियार उद्योग से अमीर हो रहे हैं, जबकि इन अरबों रुपयों का इस्तेमाल दुनिया में भूख जैसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। सोमवार शाम को मेट्स से रोम के लिए उड़ान भरते समय पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा में उनके साथ आए 80 से अधिक पत्रकारों से बात की। पोप ने अपनी बात फ्रांस की यात्रा का विवरण देकर शुरू की और पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे गए कई बड़े सवालों के जवाब दिए। पोप ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोलकर शुरू करूँगा और फिर अगर आपको अनुवाद की ज़रूरत हो तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके काम के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप पिछले 4 दिन काफ़ी व्यस्त रहे और इस तरह यह एक बहुत गहन कार्यक्रम था। 4 दिन सचमुच कई आशीर्वादों से भरे थे। मैं कहूँगा कि चमत्कार ही था, खासकर लूर्द में बिताया गया समय। इतने सारे बीमार और पीड़ित लोगों के साथ चलना, उनके साथ रहना और यह देखना कि कैसे ईश्वर की उपस्थिति की कृपा कई अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है, लोगों के दिलों को छूती है, उनका जीवन बदल देती। और एक कहावत का इस्तेमाल करूं तो बीमारों, बुजुर्गों और उन लोगों की प्रतिष्ठा वापस लाती है जिन्हें समाज के कुछ हिस्से में छोड़ दिया जाता है। इस तरह चारों दिन कई चिन्ह, कई भाव और कई प्रतीकों को महसूस किए गए और व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, खासकर उन युवाओं को हिम्मत देने के लिए जो निश्चय ही कुछ खोज रहे हैं। स्टेडियम में यह साफ दिख रहा था। शाम को फ्रांस के आसपास के 80,000 युवा एकत्रित हुए थे और उन्होंने जोश, खुशी और उम्मीद बांटी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसे पाया और दूसरों के साथ साझा भी करेंगे। इस प्रकार इन 4 दिनों में हमने जिन कई चीजों को संपन्न किया और जिया, उनमें से मैं कहूंगा कि ये कुछ खास बातें थी। इसके बाद संत पापा ने पत्रकारों के कई सवालों के उत्तर दिए। पहला सवाल, जो वैध है वह जरूरी नहीं है कि नैतिक हो। पोप का यह कथन फ्रांस में हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने की तरफ इशारा करता है। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो धर्म और राजनीति के बीच एक फर्क है। क्या आपको लगता है कि जब यह जरूरी हो, जब सब कुछ दांव में हो, तो अंतःकरण की प्राथमिकता के नाम पर इस सीमा को पार किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या आपने वह रेखा पार की? इस सवाल के उत्तर में संत पापा ने कहा, मैं कहूंगा कि कलीसिया और राजनीति या कलीसिया एवं राज्य के बीच जो फर्क है उससे मैंने नहीं तोड़ा और मैं आपको मानिफिका उमानितास पढ़ने या दोबारा पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैंने पहले भाग में, पहले कुछ अध्याय में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत के बारे में बात की है और कहा है कि जब कलीसिया जीवन की रक्षा के बारे में बात करती है, जब वह सामाजिक धर्म सिद्धांत के सवालों के बारे बात करती है, तो हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में सुसमाचार को लागू कर रहे हैं और वे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां वे कहते हैं, नहीं, धर्म सिर्फ निजी दायरे में होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से करने दें, लेकिन एक राज्य के तौर पर हमें अलग रहना होगा। इस तरह जब मैं फ्रांस गया तो मैं मुख्य रूप से सुसमाचार का प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने गया, यीशु ख्रिस्त जो स्वयं कहते हैं उसे पुनः पुष्ट करने गया। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ जो यीशु हमें देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कलीसिया जीवन की रक्षा करना सिखाती है और इस बात को बहुत गहराई से मानती है। इसलिए यह जानते हुए कि फ्रांस में हाल ही में कानून को मंजूरी मिली है, यूरोप के दूसरे देशों में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह जीवन के अंत के सवालों पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन लूज जैसे जगह पर लोग बहुत गहरी चीज खोज रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि बीमारी या विकलांगता या अलग अलग तरह के दर्द के बीच भी उनके जीवन का मतलब है। कलीसिया खुद यीशु की तरह उन लोगों के करीब रहना चाहती है और उन मूल्यों को मानना चाहती है जो जीवन खुद अपने आप में रखती है। इसलिए संत पापा ने कहा,
अगर वह राजनीति है तो मैंने वह किया है, लेकिन फ्रेंड्स राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं, यह सिखाने के लिए कि कलीसिया असल में क्या मानती है। मारी कार्मेन नामक एक 87 साल की विकलांग महिला, जिसे मैड्रिड में उस घर से बाहर निकाल दिया गया जहां वह रहती थी क्योंकि वह किराया नहीं दे सकी। इस घटना के संदर्भ में इनिगो डोमिंगेज ने संत पापा से सवाल किया, आप पूरे यूरोप एवं दुनिया भर में मौजूद आवास समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, जहां संपत्ति की सट्टेबाजी लोगों को शहरों से बाहर निकाल देती है और युवा लोग घर नहीं खरीद सकते। आप इस पूरी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? इसके उत्तर में संत पापा ने कहा कि एक कलीसिया समुदाय या एक मानव समुदाय के रूप में इसके लिए सही हल ढूंढने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले ना हों। उन्होंने कहा, आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां पड़ोसियों, समुदाय, पल्ली, धर्म प्रांत या राज्य को दखल देना चाहिए और कहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यवस्था में क्या त्रुटि है जो एक बुजुर्ग महिला को, जो विकलांग भी है या कोई और दिक्कत भी है, उसे घर से बाहर निकालने की इजाज़त देता है। उन्होंने आगे कहा, कलीसिया फेंकने की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बोलती है और यह न्याय के बारे में बोलती है। यह सभी में इंसानियत की भावना के साथ जवाब देने की क्षमता जगाने, दूसरों के दर्द और तकलीफ के प्रति सच में संवेदनशील होने की सलाह देती है। आज कई देशों में जो घर की समस्या है वह एक ऐसी समस्या है जिससे अकेला पल्ली, धर्म प्रांत या कलीसिया हल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एक बड़ी चुनौती है और शायद हमें यह भी मांग करनी चाहिए कि राजनीतिक नेता और अधिकारी इसका हल निकालें। और अंत में संत पापा ने पुनः सभी को धन्यवाद दिया। मैं इस मौके पर उन बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे रहे, जिन्हें पोप जैसी वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन जो इस यात्रा को एक साथ लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं ताकि जीवन के लिए अति आवश्यक तत्व जल का सही और टिकाऊ प्रबंधन हो सके तथा सभी के लिए इसकी आपूर्ति समान रूप से हो सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है संत पापा लियो 14वें का मिड्स में दिया गया प्रवचन भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा लियो ने फ्रांस के अपने प्रेरितिक यात्रा के अंतिम पड़ाव में मिट्स के महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित करते हुए तीन बातों, धार्मिकता, न्याय और शांति को तीन निशानियों, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल के रूप में चिंतन किया। संत पापा ने कहा, पहला पाठ में नबी इसायस को हम धार्मिकता, न्याय और शांति के रूप में ईश्वरीय राज्य के आने के बारे में कहते सुनते हैं। वे हमारे लिए तीन निशानियों को प्रस्तुत करते हैं, मरुभूमि, वाटिका और निवास स्थल। मरुभूमि एक संयम और शांति का स्थल है जहां न्याय स्थापित किया जाता है। कहने का अर्थ, संहिता जो लोगों को अच्छाई के मार्ग में चलने को मदद करती है। यह हमें त्याग और बलिदान की भी शिक्षा देती है। दूसरी निशानी हमारे लिए वाटिका के बारे कहती है जहाँ न्याय राज्य करता है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के प्रभाव को व्यक्त करता है जहाँ एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से ईश्वर की योजनाओं में अपने को संयुक्त करता, जो उसे पूरी तरह पल्लवित होने में मदद करता है। हमारे लिए तीसरी निशानी घर है, शांति का एक निवास। संत पापा ने कहा, एक घर अपने में एक पत्थर की संरचना से बढ़कर है। यह मानव की उपस्थिति और प्रेम का स्थल है। इस अर्थ में नबी के शब्द हमें इस बात की याद दिलाते हैं, एक दुनिया कमियों से भरी है, एकता का निर्माण सिर्फ करुणा के कार्य द्वारा हो सकता है। संत पापा ने कहा कि सुसमाचार भी हमें इस बात का जिक्र करता है, अत्यधिक हिंसा से ग्रसित दुनिया में जहां हम तोल मोल और घमंड को विभिन्न स्तरों पर पाते हैं, यीशु हमें मरुभूमि को मरुधान में परिवर्तित करने, वाटिकाएं लगाने और घर का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वे हमें वह मार्ग दिखलाते हैं जो क्षमा, दया और उदारता की ओर ले चलती है। हम ध्यान से अपने और अपने चारों ओर देखें, बदले, हिंसा और परित्याग की भावनाएं किन चीजों को लाती हैं हमारे अंदर और हमारी दुनिया दोनों में। ऐसे क्रूर मनोभावों से उत्पन्न होने वाले रिश्ते और सिस्टम मानव के लिए कैसा भविष्य लेकर आएगा। आप में से जो इस धरती की संतान हैं, जो आपसी संघर्षों से टूटी हुई है, अच्छी तरह इस बात को जानते हैं कि यह सच नहीं है कि बदला लेने वाला क्षमा देने वाले से अधिक मजबूत है। मेल मिलाप केवल तब संभव है जब कोई क्रोध की कड़ियों को तोड़ने का साहस करता है। अतः संहिता, न्याय और परिवर्तन शांति के एक मार्ग में कदमों स्वरूप हैं, जो एक व्यक्तिगत यात्रा से शुरू होती है और समुदाय का अंग बनती है। संत पापा लियो ने कहा कि यहाँ मिड्स में इन मूल्यों की याद करना अपने में महत्वपूर्ण है, जिस पर यूरोप सदियों से निर्मित हुआ है, जहाँ हम उसकी आध्यात्मिक और नैतिक विरासतों को पाते हैं, जो आर्थिक और राजनैतिक धरोहरों को विस्तृत करता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय इसकी याद करते हुए कहते हैं कि इसकी जड़ें नर और नारियों के जीवन तथा कार्यों में है, जो सुसमाचार की शिक्षाओं को जीते उसे घोषित और साझा करते हैं। हम इसे महान आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और यहाँ तक कि कृषि और शिल्पकारिता की योग्यता में देख सकते हैं, जिसे मठवासी वाद ने इतिहास में प्रसारित किया।
2: Les principes moraux du monde dans lequel nous vivons nous ont été transmis à partir de là, des principes tels que la primauté de la personne.
1: Sant Papa ne kaha ki naitik siddhant jo duniya ko sanchalit karti hai, ve hame yahan se mili hai. मूल सिद्धांतें जैसे कि मनुष्य की प्रधानता और उसकी पवित्रता तथा सभी स्थितियों और सभी परिस्थितियों में मानवीय जीवन की अपरिहार्यता, व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज की मूलभूत कड़ी स्वरूप, परिवार की प्रधानता, गरीबों और अति संवेदनशीलों की देखरेख, अपरिचितों का स्वागत तथा बुजुर्गों का सम्मान, आपके स्थानीय कलिसिया जो अपनी विशेष स्थिति के कारण नागर समाज और विश्वास के सार्थक गुणों के आधार पर वार्ता की अद्वितीय विरासत को संजोकर रखती है, यह जिम्मेदारी है कि वह इस निष्ठा का एक जीवंत प्रयोगशाला बने। इन सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान बने रहना अपने में कभी भी सहज नहीं है, उनके लिए भी जो हमसे पहले आए। इसके बावजूद निष्ठा और लगनता में हमारे पूर्वजों ने इन्हें एक धरोहर के रूप में सौंपा ताकि हम इन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकें। साथ ही हमारे अनुभव, हमारी कोशिशें और हमारी कहानियों से इनके मूल्यों में और भी अधिक वृद्धि होती है।
2: La magnifique cathédrale de cette ville où nous nous trouvons illustre très bien tout cela.
1: इस शहर का शानदार महागिरजाघर जहां हम आज जमा हुए हैं, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यह लैटन्स डुबोन ड्यू के नाम से जानी जाती है क्योंकि इसमें 6,500 स्क्वायर मीटर रंगीन कांच की खिड़कियां हैं जिन पर धर्मग्रंथ के दृश्यों को चित्रित किया गया है। ऐसा लगता है कि बनाने वालों ने दीवारों को छोटा करने की कोशिश की जो अब भी ठोस है ताकि भक्तों तक भरपूर रोशनी पहुंच सके। इस तरह जो कोई भी अंदर आता है वह हजारों रंगों की झलक के जरिए प्रार्थना और ध्यान के एक शानदार स्रोत बिब्लिया पापरम में डूब जाता है। रोशनी की इस जगह में ऐतिहासिक रंगीन कांच की खिड़कियों की अद्वितीयता को हाल ही में मार्क चागल की प्रतिभा ने और भी निखार दिया। महागिरजा की दीवारों पर बने इस महान यहूदी चित्रकार की कृति ने लैंटन्स डू बॉन ड्यू को एकता और अलग अलग धर्मों के बीच वार्ता का एक अनोखा प्रतीक बनाया है। यह महागिरजा घर हमें सिखाती है कि ईश्वर की रोशनी हमारी खास पहचान को नहीं मिटाती है बल्कि अलग अलग इतिहास और संस्कृतियों को शांति के एक शानदार पिचकारी में जोड़ती है जो हमारे समय में बहुत जरूरी है, जो नए बंटवारे और झगड़ों से टूटी है। जब हम इन रंगीन कांच की खिड़कियों के बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि यूरोप का भविष्य एक जैसा होने में नहीं बल्कि मतभेद के तालमेल में है, जहां अतीत के घाव ऐसी जगह बन जाते हैं जिनसे रोशनी चमकती है। संत पापा लियो ने कहा, इस निशानी में हम कलिसे की पहचान को पाते हैं। हम उन संरचनाओं का उपयोग करते हैं जो सुसमाचार की ज्योति को फैलाने में मदद करती है। इन रंगीन खिड़कियों के बिना संत स्टीफन महागिरजा घर चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर रहा होता।
2: Avec ces vitraux, elles deviennent des livres qui nous rassemblent pour faire mémoire d'histoires merveilleuses.
1: इन रंगीन खिड़कियों के द्वारा यद्यपि वे खिड़कियां पुस्तकें बनती हैं जो हमें नायकी, अच्छाई, करुणा, प्रेम और नैतिक सुंदरता की याद दिलाती हैं, जिनकी ओर हमें उदारता और साहस में आने तथा उन्हें अपने साक्ष्यों में प्रस्तुत करने को कहा जाता है। कृतज्ञता और विश्वास के भाव में जैसे जैसे फ्रांस की मेरी यात्रा खत्म हो रही है, मैं मिट्स के समुदाय से यह साझा करना चाहता हूँ जो पहले से कहीं ज्यादा आज यूरोप और दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनने को बुलाई जाती है, और मैं इसे कुमारी मरियम और आपके संरक्षक संतों की देख रेख में सुपुर्द करता हूँ।
2: On a confiance aux prières de la Vierge Marie et de vos saints patrons.

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी 4 दिवसीय प्रेरित यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की और 28 सितंबर की शाम वैटिकन वापस लौटे। मेड से रोम वापसी की विमान यात्रा में परंपरा के अनुसार पत्रकारों से बातें हुई, जिसमें उन्होंने युद्ध और उन्हें बनाए रखने वाले आर्थिक फायदों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी आवाज उठा रही है। कुछ लोग हथियार उद्योग से अमीर हो रहे हैं, जबकि इन अरबों रुपयों का इस्तेमाल दुनिया में भूख जैसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। सोमवार शाम को मेट्स से रोम के लिए उड़ान भरते समय पोप लियो 14वें ने फ्रांस की अपनी प्रेरित यात्रा में उनके साथ आए 80 से अधिक पत्रकारों से बात की। पोप ने अपनी बात फ्रांस की यात्रा का विवरण देकर शुरू की और पत्रकारों द्वारा उनसे पूछे गए कई बड़े सवालों के जवाब दिए। पोप ने कहा, मैं अंग्रेजी में बोलकर शुरू करूँगा और फिर अगर आपको अनुवाद की ज़रूरत हो तो हम उसमें मदद कर सकते हैं। सबसे पहले आपके काम के लिए फिर से धन्यवाद। मुझे लगता है कि आप पिछले 4 दिन काफ़ी व्यस्त रहे और इस तरह यह एक बहुत गहन कार्यक्रम था। 4 दिन सचमुच कई आशीर्वादों से भरे थे। मैं कहूँगा कि चमत्कार ही था, खासकर लूर्द में बिताया गया समय। इतने सारे बीमार और पीड़ित लोगों के साथ चलना, उनके साथ रहना और यह देखना कि कैसे ईश्वर की उपस्थिति की कृपा कई अलग अलग तरीकों से दिखाई देती है, लोगों के दिलों को छूती है, उनका जीवन बदल देती। और एक कहावत का इस्तेमाल करूं तो बीमारों, बुजुर्गों और उन लोगों की प्रतिष्ठा वापस लाती है जिन्हें समाज के कुछ हिस्से में छोड़ दिया जाता है। इस तरह चारों दिन कई चिन्ह, कई भाव और कई प्रतीकों को महसूस किए गए और व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि मुझे फ्रांस जाने का मौका मिला, खासकर उन युवाओं को हिम्मत देने के लिए जो निश्चय ही कुछ खोज रहे हैं। स्टेडियम में यह साफ दिख रहा था। शाम को फ्रांस के आसपास के 80,000 युवा एकत्रित हुए थे और उन्होंने जोश, खुशी और उम्मीद बांटी। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने इसे पाया और दूसरों के साथ साझा भी करेंगे। इस प्रकार इन 4 दिनों में हमने जिन कई चीजों को संपन्न किया और जिया, उनमें से मैं कहूंगा कि ये कुछ खास बातें थी। इसके बाद संत पापा ने पत्रकारों के कई सवालों के उत्तर दिए। पहला सवाल, जो वैध है वह जरूरी नहीं है कि नैतिक हो। पोप का यह कथन फ्रांस में हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध बनाने की तरफ इशारा करता है। फ्रांस में धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है, जो धर्म और राजनीति के बीच एक फर्क है। क्या आपको लगता है कि जब यह जरूरी हो, जब सब कुछ दांव में हो, तो अंतःकरण की प्राथमिकता के नाम पर इस सीमा को पार किया जाना चाहिए? और अगर ऐसा है तो क्या आपने वह रेखा पार की? इस सवाल के उत्तर में संत पापा ने कहा, मैं कहूंगा कि कलीसिया और राजनीति या कलीसिया एवं राज्य के बीच जो फर्क है उससे मैंने नहीं तोड़ा और मैं आपको मानिफिका उमानितास पढ़ने या दोबारा पढ़ने के लिए आमंत्रित करता हूं, जहां मैंने पहले भाग में, पहले कुछ अध्याय में कलीसिया के सामाजिक धर्म सिद्धांत के बारे में बात की है और कहा है कि जब कलीसिया जीवन की रक्षा के बारे में बात करती है, जब वह सामाजिक धर्म सिद्धांत के सवालों के बारे बात करती है, तो हम राजनीति में नहीं जा रहे हैं, हम लोगों के जीवन में सुसमाचार को लागू कर रहे हैं और वे राजनीतिज्ञ हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में जहां वे कहते हैं, नहीं, धर्म सिर्फ निजी दायरे में होना चाहिए, लोगों को अपनी मर्जी से करने दें, लेकिन एक राज्य के तौर पर हमें अलग रहना होगा। इस तरह जब मैं फ्रांस गया तो मैं मुख्य रूप से सुसमाचार का प्रचार करने, सुसमाचार सुनाने गया, यीशु ख्रिस्त जो स्वयं कहते हैं उसे पुनः पुष्ट करने गया। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ जो यीशु हमें देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कलीसिया जीवन की रक्षा करना सिखाती है और इस बात को बहुत गहराई से मानती है। इसलिए यह जानते हुए कि फ्रांस में हाल ही में कानून को मंजूरी मिली है, यूरोप के दूसरे देशों में भी दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरह जीवन के अंत के सवालों पर बहुत बहस चल रही है, लेकिन लूज जैसे जगह पर लोग बहुत गहरी चीज खोज रहे हैं और यह समझ रहे हैं कि बीमारी या विकलांगता या अलग अलग तरह के दर्द के बीच भी उनके जीवन का मतलब है। कलीसिया खुद यीशु की तरह उन लोगों के करीब रहना चाहती है और उन मूल्यों को मानना चाहती है जो जीवन खुद अपने आप में रखती है। इसलिए संत पापा ने कहा,
अगर वह राजनीति है तो मैंने वह किया है, लेकिन फ्रेंच राजनीति में शामिल होने के लिए नहीं, यह सिखाने के लिए कि कलीसिया असल में क्या मानती है। मारी कार्मेन नामक एक 87 साल की विकलांग महिला, जिसे मैड्रिड में उस घर से बाहर निकाल दिया गया जहां वह रहती थी क्योंकि वह किराया नहीं दे सकी। इस घटना के संदर्भ में इनिगो डोमिंगेज ने संत पापा से सवाल किया, आप पूरे यूरोप एवं दुनिया भर में मौजूद आवास समस्या के बारे में क्या सोचते हैं, जहां संपत्ति की सट्टेबाजी लोगों को शहरों से बाहर निकाल देती है और युवा लोग घर नहीं खरीद सकते। आप इस पूरी समस्या के बारे में क्या सोचते हैं? इसके उत्तर में संत पापा ने कहा कि एक कलीसिया समुदाय या एक मानव समुदाय के रूप में इसके लिए सही हल ढूंढने की जरूरत है ताकि ऐसे मामले ना हों। उन्होंने कहा, आप जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं मैं उसके बारे नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मामला होगा जहां पड़ोसियों, समुदाय, पल्ली, धर्म प्रांत या राज्य को दखल देना चाहिए और कहना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है, उस व्यवस्था में क्या त्रुटि है जो एक बुजुर्ग महिला को, जो विकलांग भी है या कोई और दिक्कत भी है, उसे घर से बाहर निकालने की इजाज़त देता है। उन्होंने आगे कहा, कलीसिया फेंकने की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बोलती है और यह न्याय के बारे में बोलती है। यह सभी में इंसानियत की भावना के साथ जवाब देने की क्षमता जगाने, दूसरों के दर्द और तकलीफ के प्रति सच में संवेदनशील होने की सलाह देती है। आज कई देशों में जो घर की समस्या है वह एक ऐसी समस्या है जिससे अकेला पल्ली, धर्म प्रांत या कलीसिया हल नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ एक बड़ी चुनौती है और शायद हमें यह भी मांग करनी चाहिए कि राजनीतिक नेता और अधिकारी इसका हल निकालें। और अंत में संत पापा ने पुनः सभी को धन्यवाद दिया। मैं इस मौके पर उन बहुत से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे रहे, जिन्हें पोप जैसी वाहवाही नहीं मिलती, लेकिन जो इस यात्रा को एक साथ लाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।